जी हाँ दोस्तों, 107 FM रेनबो पर नॉन स्टॉप गपशप में हाजिर हो गई है आपकी दोस्त सविता। और वादा किया था कि 9 तारीख को हम मिलने वाले हैं, तो वादे के अनुसार आप पहुंची है आपकी दोस्त।

जी हाँ दोस्तों, नॉन स्टॉप गपशप पर एक बार फिर से आपकी दोस्त सविता करती है स्वागत अभिनंदन। और कार्यक्रम की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन एक खास और मजेदार और एक सकारात्मक खबर के साथ हम अखबार की खास सुर्खी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। जी हाँ।

यहाँ विलुप्ति की वापसी है। दुर्लभ प्रजाति के आखिरी पेड़ को मिला नया जीवन, कैसे बताते हैं आपको। दोस्तों, इंसानी जज्बे और विज्ञान के मेल ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और दुर्लभ पेड़ में से एक को विलुप्त होने के कगार से खींच लिया है, बचा लिया है। चिली के सुदूर रॉबिन्सन क्रूसो द्वीप पर डेंड्रोसेरिस नेरीफोलिया प्रजाति के आखिरी जंगली पेड़ से जुटाए गए बीज और अब ब्रिटेन में अंकुरित हो गए हैं। दोस्तों, कभी ज्वालामुखी से बने द्वीप पर चारों तरफ यह पेड़ फैले हुए थे। वनों की कटाई, इंसानी बस्तियां, मिट्टी के कटाव, जंगलों की आग, इन सभी के कारण ये प्रजातियां खत्म हो चली थी। लेकिन आज पूरी दुनिया में इस प्रजाति का एक ही पेड़ जीवित बचा है और इस पेड़ से जुटाए गए 29 बीजों को ब्रिटेन के मिलेनियम सीड बैंक भेजा गया और अब इन्हें रॉयल बॉटेनिकल गार्डन में 7 पौधे उग आए हैं। तो इस प्रकार इस आखिरी बचे पेड़ के बीजों को सुरक्षित रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन चलाया गया। यह पेड़ एक सीधी खड़ी और खतरनाक चट्टान के किनारे टिका हुआ है और यहाँ पहुँचने के लिए बीज संग्रहकर्ता और रेंजर्स के लोगों को घंटों पैदल चलना पड़ा और रस्सियों के सहारे खतरनाक पेड़ की उन्होंने चढ़ाई भी की। तो दोस्तों, पेड़ बचाना कितना ज़रूरी है और कितना आवश्यक है और ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए संग्रह करना, इनका संरक्षण करना, ये तो हम सभी जान चुके हैं। तो बस आइए इस मुहिम में हम भी छोटा सा योगदान तो दे सकते हैं। चलिए एक गीत आपको सुनवाते हैं और फिर हम बताएंगे कि आज हम क्या बातें करने वाले हैं, तब आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं।

0: লিসা না, আমাকে খুব জলদি কিছু জিনিস পাঠাতে হবে, কোন সুপার ফাস্ট অপশন আছে নাকি?
1: আরে ভাই একদম, ইন্ডিয়া পোস্ট নিয়ে এসেছে 24 স্পিড পোস্ট, মানে পরের দিনই নিশ্চিত ডেলিভারি।
0: তাই নাকি? মানে দরকারি ডকুমেন্ট থেকে পার্সেল বা যে কোনো জরুরি জিনিস সবকিছু এত তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে?
1: আরে হ্যাঁ ভাই, রয়েছে রিয়েল টাইম ট্র্যাকিং, পকেট ফ্রেন্ডলি রেট, আর সবচেয়ে জরুরি ওটিপি ভিত্তিক নিরাপদ ডেলিভারি। শুধু ভরসা রাখো ইন্ডিয়া পোস্টের উপর।
2: বিশদে জানতে আপনার কাছের পোস্ট অফিসে যোগাযোগ করুন বা ভিজিট করুন indiapost.gov.in।
3: আজ কে দিন।
4: जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आज के दिन की बात करते हैं। और हमारे पास यूँ तो फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो गए हैं और एक हमारी श्रोता हैं सुप्रिया जी, उन्होंने अभी अभी कॉल किया और उन्हें सुबह का प्रोग्राम FM गोल्ड पर बहुत पसंद आया, सुहाना सफ़र पर, सुहानी सुबह का। तो दोस्तों सुप्रिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, गौरवपूर्ण गाथाओं के खजाने शायद संसार के हर देश के इतिहास में छुपे हैं। उन्हीं कहानियों से गुजरती नस्लें लिख देती हैं एक और इतिहास और बन जाते हैं वो ऐतिहासिक तथ्य। तो दोस्तों, 9 जून को जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी उनमें 68 ईस्वी में इसी दिन रोमन सम्राट नीरो ने आत्महत्या कर ली थी, जिसका रोमन साम्राज्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। 721 ईस्वी में एक्टिटेन के ओडो ने टूलूस के युद्ध में उम्मीद सेना को हराया, जो फ्रेंकिश क्षेत्रों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 1549 में चर्च ऑफ इंग्लैंड ने बुक ऑफ कॉमन प्रेयर को अपनाया, जिसने इंग्लैंड और अन्य जगहों पर ईसाई धर्म के पालन को प्रभावित किया। दोस्तों, 9 जून 1977 को ग्रेट ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की रजत जयंती मनाई गई, जिसे भव्य समारोह के साथ मनाया गया। तो दोस्तों, ये घटनाएं ऐसी घटनाएं जो कि इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। और आज के दिन कुछ खास दिवस भी मनाए जाते हैं, आपके साथ शेयर कर लेते हैं। जी हाँ, राष्ट्रीय भोजन तैयारी दिवस, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में मनाया जाता है। बेहतर आहार संबंधी आदतों के लिए भोजन की योजना बनाने और उसे पहले से तैयार करने को प्रोत्साहित करता है। तो बेहतर आहार, सुबह सुबह आप क्या खाते हैं दोस्तों? तो एक टिप्स दे सकती हूँ जी हाँ, कि सुबह सुबह खाली पेट आप सत्तू घोलकर तो खाई पी सकते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिशियस तो है ही और हमें ताजगी देता है, साथ ही हमारे फैट को कम करता है और पौष्टिक बहुत अधिक है। इसके अलावा आज है राष्ट्रीय डोनाल्ड डक दिवस। संयुक्त राज्य अमेरिका डिज्नी के क्लासिक किरदार डोनाल्ड डक के जन्मदिन का जश्न मनाता है। विश्वव्यापी सार्वजनिक बुनाई दिवस भी है। ये एक ऐसा दिन है जो बुनकरों को सार्वजनिक स्थानों पर एक साथ आकर बुनाई करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो आज के दिन को हमने किया आपके साथ साझा और आप सुन रहे हैं
5: थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर।
4: तो दोस्तों, अभी फिलहाल एक गीत।

0: ऑफ कल्चर।
1: जी हाँ दोस्तों, नॉन स्टॉप गपशप में अब आगे बढ़ते हुए हम कोलकाता कल्चर यानी कोलकाता में होने वाली सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों को करते हैं साझा। तो आ चुके हैं उसी मोड़ पर। अगर आप अंग्रेजी साहित्य और रचनात्मक लेखन में रुचि रखते हैं तो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी कोलकाता में द रीडिंग क्वेस्ट का आयोजन चल रहा है। यह कार्यशाला 1 जून से शुरू हो चुकी है, जहाँ आप साहित्यिक चर्चा और गहन पाठन का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा साहित्य अकादमी कोलकाता के साहित्य अकादमी सभागार में अक्सर हिंदी और अन्य भाषाओं की पुस्तकों पर चर्चा और गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। तो आप आगामी सेमिनारों की बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट पर जा करके उसके बारे में जान सकेंगे। दोस्तों बढ़ते हैं आगे, लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि आज खास क्या बात हम करने वाले हैं। जी हाँ, कई बार अब तो छुट्टियां हो चुकी हैं, आपको छुट्टियों का इंतज़ार है, बच्चों के स्कूल होने के बाद परीक्षाएं होकर के अब रिजल्ट्स भी आने लगे हैं, तो आप अभी छुट्टी के मूड में होंगे और जैसे ही समर वैकेशन आता है तो आप कहीं प्लान कर लेते हैं कि पर्वतों में पहाड़ों के पीछे उगता हुआ सूरज देखें, या फिर समुद्र में डूबते हुए सूरज को निहारें, या फिर चलिए किसी पहाड़ों पर हम ट्रैकिंग करने के लिए चलते हैं, या फिर हरी वादियों में अपने कुछ लम्हों को जिया जाए। होता है ना ऐसा, अक्सर होता है। जी हाँ, और आप प्लान भी कर चुके होंगे अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, बच्चों के साथ। लेकिन लेकिन लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। जी हाँ, विषय ये है कि आजकल सोलो ट्रैवल का बहुत चलन चल चुका है, यानी अकेली यात्रा का। अकेले लड़के लड़कियां, नौजवान या फिर जो लोग हैं वो घूमने जा रहे हैं अकेले, बिल्कुल अकेले। तो आप ऐसा क्या सोचते हैं, आपको अकेले यात्रा करने पर क्या मिलता है और किस तरह की चीज़ों को आप डिस्कवर करते हैं, ये मेरे साथ जुड़ करके बता सकते हैं और मिल सकते हैं।

जी हाँ दोस्तों, दिल मेरे बस में कहाँ। हाँ, जब आप कहीं प्लान कर लेते हैं और आपकी जो तारीख है धीरे धीरे धीरे धीरे नज़दीक आती चली जाती है तो फिर दिल कहाँ बस में रहता है। दोस्तों 2213-1341 पर आप कर सकते हैं मेरे साथ नॉनस्टॉप गपशप। जी, हमने बात की कि वैसे तो हम सभी बाहर कहीं इधर उधर घूमने जाते हैं और परिवार के साथ जाते हैं, बच्चों के साथ जाते हैं या फिर दोस्तों के साथ जाते हैं, रिश्तेदारों के साथ जाते हैं। लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड चला है सोलो ट्रैवलर का। जब कोई इंसान बिना किसी परिवार के सदस्य के, दोस्त के या रिश्तेदार के साथ अपनी छुट्टियों पर या यात्रा पर अकेले निकलता है तो उसे कहते हैं सोलो ट्रैवलर। दोस्तों, इसमें कई बार होता है कि हम अपनी दुनिया अपनी शर्तों पर घूमते हैं, निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता होती है, आत्मखोज का एक नया सशक्त अनुभव हमें मिलता है। तो ऐसा कई बार आपने नहीं सोचा तो सोच भी सकते हैं और आप मेरे साथ बात कर सकते हैं कि ये यदि आपको मिले सोलो ट्रैवल तो आप क्या क्या करेंगे, और यदि आपने खुद को खोज लिया है तो फिर क्या अनुभव रहा, ये भी मेरे साथ कर सकते हैं अपने अनुभव को साझा 2213-1341 पर। फिलहाल तो एक गीत अलका याग्निक की आवाज़ में।

जी हाँ दोस्तों, 10:38 और 25 सेकंड हो चुके हैं नॉन स्टॉप गपशप पर। और हमने बात की कि यदि आप अकेले कहीं घूमने जाते हैं बाहर, तो आप को कैसा लगता है, आपके अनुभव क्या है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं।

0: हैं तो देखें वो क्या कहते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: जी, आपका नाम बताइए।
1: गुड मॉर्निंग जी।
0: गुड मॉर्निंग,
1: मैं जीतू बातें कर रहा हूँ रिश्रा से।
0: रिश्रा से जीतू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बताइए कैसे हैं पहले तो।
1: बिल्कुल एकदम, अभी हम बिल्कुल ठीक हूँ। और गर्मी है तो गर्मी में तो कैसा होगा हाल, आप जानते ही होंगे।
0: जी
1: तो आज जो कलम सुन रहे हैं आपका, बहुत अच्छा लग रहा है, गाने भी बज रहे अच्छे अच्छे और अभी जस्ट आप जो बजाए राज फिल्म का गाना, बहुत ही अच्छा लगा
0: जी, शुक्रिया।
1: और आपका जो टॉपिक है उसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा जी, देखिए घूमने फिरने तो सभी जाते हैं ना, मैं भी जाता हूँ और मैं जाने वाला हूँ इस महीने में।
0: कहाँ जा रहे हैं?
1: इस बार दोस्तों के संग प्लान भी था अलग से, लेकिन मेरा लेकिन क्या हुआ कि एक और मतलब जो रहता है मेरा मौसी का घर जो है, तो वहाँ पर एक दिन का शादी है, तो वहाँ पर वहाँ से निमंत्रण आ चुका है, तो वहीं पर हम लोग जाएंगे घूमने के लिए। अब तो 20 तारीख को निकल जाएंगे हम लोग और पूरा फैमिली के साथ जाने वाले हैं, और ऐसे एक प्लान बनाए थे हम लोग दोस्तों के संग जाने वाले थे, तो वो कैंसिल हो चुका है। तो बस यही मैं बोलना चाहूंगा आज का जो टॉपिक के बारे में। और जो फैमिली के साथ घूमना है वो उसमें भी आनंद आता है, और एक दोस्तों के साथ घूमना मतलब संग में घूमना उसमें भी एक अलग ही मजा है।
0: बिल्कुल,
1: तो मैं यही बोलना चाहूंगा जी, बस इतना ही आपका टॉपिक।
0: शुक्रिया,
1: थैंक यू।
0: तो हमारे साथ जीतू जी जुड़े थे और उन्होंने अपने मन की बात कही, वो अभी घूमने जाने वाले हैं। और हम तो यही दोस्तों से कहेंगे कि यदि थोड़े से थक गए हैं, थोड़े से परेशान हो गए हैं, तो रिलैक्स होने के लिए कहीं ना कहीं चाहे एक दिन का या दो दिन का प्लान कर ही सकते हैं। और हाँ, फिलहाल आसपास ही करिए, क्योंकि अभी थोड़ी सी हमारे यहाँ युद्ध जो हो रहे हैं उसके कारण जो ईंधन है उसको भी हमें बचाना है। तो ऐसे में हम खुद को भी सजग रख सकते हैं और इस तरह से अपने राष्ट्र को एक छोटा सा सहयोग दे सकते हैं। और एक टिप, क्या एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगी कि यदि आप कहीं बाहर जाते हैं तो सबसे पहले अपनी टिकट, आईडी, पासपोर्ट, पैसे, कार्ड, स्मार्टफोन, चार्जर, पावर बैंक, मूलभूत दवाएं, पेन किलर, बैंडेड जैसी चीज़ों को ज़रूर रखें, और मौसम के अनुसार जो कपड़े हों उनको भी रखना ना भूलें। एक हमारे दोस्त जुड़ चुके हैं तो हम उनको ले लेते हैं। हेलो हेलो
2: हेलो, मैं नन्ने बोल रहा हूँ पाटनगर से।
0: नन्ने जी, जी बड़े दिनों बाद आप आए हैं।
2: नहीं जी, आपको इस दिन फोन किया तो फोन नहीं लगाते मेरे।
0: अरे वाह, गलती आपको मतलब थोड़ी देर हो गई होगी लगता है।
2: नहीं, आपसे बात करने बहुत दिल था लेकिन आज तो लग गया ना
0: जी। चलो आज लग गया, बताओ क्या कहना चाहते हो।
2: लेकिन बहुत बढ़िया बढ़िया गाना बज रहा है, मेरा पसंद का भी गाना बज रहा है, अभी देख रहे सुन रहे ना।
0: अच्छा,
2: अच्छा लग रहा हमको
0: जी।
2: अभी तो गर्मी ऐसी हो रहा है, हाई हाई गर्मी हो गया एकदम।
0: हाय हाय गर्मी जी। चलिए, गर्मी में अपने आप को पानी बहुत पीते रहिएगा और जो धूप है उससे बचाइए।
2: धूप से बचाए हूँ लेकिन बाहर ज्यादा नहीं जा रहा हूँ। गर्मी है, कोई जगह घूमने का भी कोई प्लान नहीं किए, लेकिन घूमने जाने से बहुत दिक्कत होगा जो मौसम है ना
0: जी। तो चलिए आप लेकिन गर्मी से अपने आप को बचाते रहिए घर में रह करके या फिर अपने काम के स्थान पर।
2: बोले आप अच्छे से चीज दीजिए, हम लोग ऐसी ऐसी चीज खाएंगे अच्छे रहेंगे।
0: अच्छी अच्छी क्या खाओगे चीजें?
2: नहीं बोले अच्छे अच्छे कोई नहीं दीजिए, चीज दीजिए ऐसी ऐसी कोई चीज खाए अच्छे रहे।
0: अच्छा ठीक है, हम आपको ऐसे टिप्स देंगे। ठीक है, तो दोस्त हमारे साथ नन्हे जी जुड़े थे और फिलहाल हम एक गीत सुनवाएंगे और उसके बाद हमारे और कॉलर जुड़ेंगे तो हम उनसे भी बात करवाएंगे।

0: जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से नॉन स्टॉप गपशप पर आपका करते हैं हम स्वागत। और कार्यक्रम एक चुटकी नुस्खे की ओर चलिए, उस पायदान की तरफ चले।
1: एक चुटकी नुस्खे।
0: दोस्तों बात घूमने फिरने की हो रही है तो उसी से संबंधित बात भी मैं करना चाहूँगी। जी हाँ, हम अक्सर छुट्टियों में अपने बुआ के घर, मौसी के घर, नानी के घर, दादी के घर, मामी के घर या फिर ऐसे बहुत सारी जगह पर जाते हैं जहाँ हमारे प्रियजन रहते हैं, उनसे मुलाकात हो जाती है। लेकिन वहाँ जाने से समय या उससे पहले हमें कुछ शिष्टाचारों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि रिश्ते हमारे मधुर बने रहें। सबसे पहली बात है कि जब आप किसी के घर जा रहे हैं तो पहले से उनको बता दें ताकि वो अपनी दिनचर्या और काम को आराम से कर सकें, समय का पालन करें, समय पर पहुंचें और घर के नियमों का सम्मान करें। जैसे कि यदि वो उनके घरों में जूते चप्पल बाहर उतारे जाते हैं तो ध्यान रखें, उनकी परंपरा का अनुमति लें। यदि कोई काम करना चाहते हैं उनके घर में बैठ करके, तो खास कोई ऐसा चीज़ को आप छू रहे हैं तो उससे पहले उनसे पूछ लें। साथ ही अच्छे से घर में प्रवेश करते समय जो बच्चे होते हैं बड़ों को नमस्ते और प्रणाम करते हैं, गलत हाथ का प्रयोग ना करें। किसी को कोई भी वस्तु खासकर देते या लेते समय अपने दाहिने हाथ का प्रयोग करें। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप किसी के घर जा रहे हैं तो हमें लगता है कि अपना काम खुद करना चाहिए, जैसे कि अपने कपड़े धोना, अपनी प्लेट खाने की उठा करके किचन में रख देना, या फिर यदि कोई सेवक या सेविका नहीं है तो खुद ही उसको धो देना ताकि हम किसी के ऊपर बोझ ना बने। साथ ही यदि जो भी खाने के लिए परोसा जा रहा है उसे ग्लैडली स्वीकार करें, प्रेम से खाएं और उनकी बनी हुई खाने का स्वागत करें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक दोस्त, तो अभी उनको फिलहाल ले लेते हैं। हेलो,
2: नमस्कार जी।
0: नमस्कार श्रीकांत जी, मैं पहचान गई। बताइए कैसे हैं?
2: मैं अच्छा हूँ, आप कैसे?
0: मैं भी एकदम बढ़िया। बताइए क्या कहना चाहते हैं?
2: मैं क्या अभी एयर पे हूँ क्या?
0: जी बिल्कुल ऑन एयर है आप।
2: अच्छा जी, तो ये कहना चाहूंगा कि जो पर्यटन है वो कभी भी अकेले में नहीं होना चाहिए, हमेशा परिवार के साथ या दोस्तों के साथ ही होना चाहिए। क्योंकि जब आप अकेले रहेंगे तो आप किसी न किसी का साथ खोजेंगे, तो अच्छा है घर से ही साथ लेके चलिए। और दूसरी बात ये कि देखिए, जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टूर, टूर शब्द में वो यू आर आवर है, तो टूर जो है वो आवर अपने साथ होना चाहिए, हम सब के साथ ही होना चाहिए। और अगर आप हिंदी में देखें, इंग्लिश में देखें, एक दूसरा शब्द एक्सकर्शन, एक्सकर्शन, एक्स माने बीत गया और कर्ष माने श्राप और सन, तो जो बीत गया उसको श्राप समझ के आप नई जगह पे जाइए। तो भारत में इतनी जगह घूमने की, तो कभी भी एक जगह पे दोबारा मत जाइए, क्यों कि देखी हुई फिल्म अगर दोबारा देखेंगे तो पैसा ही बेकार होगा। धन्यवाद जी।
0: तो शुक्रिया श्रीकांत जी, आपने बहुत सारी अच्छी टिप्स दी और साथ में उन्होंने कहा कि आप अकेले मत जाइए, क्योंकि वो अकेले ट्रिप के पक्ष में नहीं है, लेकिन ये सभी का अपना अपना विचार है। तो लेकिन हम तो यही कहेंगे कि यदि आप अकेले जा भी रहे हैं तो सावधानियां बहुत अधिक बरतनी चाहिए, क्योंकि आज आप कहीं भी यदि आपकी तबीयत खराब हो जाए या किसी तरह की मिसहैपनिंग हो जाए तो मुसीबत में इंसान फंस ही जाता है। उस तरह की बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है आपकी, उस टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के आप सहायता लेते हुए अकेले सफ़र करें तो बहुत सावधानी के साथ, बहुत चुस्त और दुरुस्त रहें। दोस्तों अब और ज़्यादा वक्त नहीं रहा मेरा कॉल भी लेने का और ना ही आपसे बातें करने का, बस अभी तो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। लेकिन जाने से पहले यही कहूँगी कि 11:10 पर FM गोल्ड खरासोना पर ज़रूर सुनिएगा मेरा कार्यक्रम 100.1 पर, यानी खरा सोना पर मैं रहूंगी सविता आपके साथ। और फिलहाल 107 FM रेनबो पर आपकी दोस्त सविता आपसे चाहेगी इजाज़त। और मैं कब आने वाली हूँ ये आपको मन में चल रहा होगा ना कि मैं कब आने वाली हूँ, तो मैं कल ही आने वाली हूँ। जी हाँ बिल्कुल।

मैं कल मिलूंगी आपसे बैक टू बैक दूसरे प्रोग्राम में। कहते चलते चलते बस इतना ही कि दुआओं में अपनी असर ढूंढता हूँ, दुआओं में अपनी असर ढूंढता हूँ, मोहब्बत की पहली नज़र ढूंढता हूँ। तो आपको मोहब्बत मिलती रहे, आप मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, खिलते रहें। इसी दुआ के साथ अपनी दोस्त सविता को दीजिए इजाज़त।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
2: 107 FM रेनबो पर तीन का तड़का, 3:05 और 20 सेकंड आप जुड़े हुए इस कार्यक्रम में संचिता के साथ। रंगीन पर्दे की दुनिया से चमकते ख्वाबों की गली तक खबरों का मसालेदार जायका लाए हम आपके लिए खास तड़का। गॉसिप, ग्लैमर और सिनेमा का मजा हर पल में मिलेगा तीन का तड़का। तैयार हो जाए दोस्तों, आपके और हमारे जो दरमियान है बॉलीवुड की हर हलचल जानने के लिए कार्यक्रम है तीन का तड़का। शुरू करेंगे इस गीत से, फिल्म का नाम सैयारा, साचित परंपरा की आवाज़।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का। टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर। टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर।
2: 107 FM रेनबो पर तीन का तड़का शुरू करते हैं। पहले चंग के साथ आमिर खान की लगान के 25 साल पूरे हो गए। खास रियूनियन की तैयारी चल रही है। जी हाँ, बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान जून के पहले सप्ताह में एक बेहद खास वजह से चर्चा में आ रहे हैं। खबरों के अनुसार सुपरहिट फिल्म लगान के 25 साल पूरे होने के अवसर पर फिल्म की पूरी टीम के साथ एक विशेष रियूनियन की योजना बनाई जा रही है। इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक इस आयोजन में फिल्म की यादों, शूटिंग के अनसुने किस्से और कलाकारों के अनुभवों को साझा किया जाएगा। सोशल मीडिया पर प्रशंसक भी उत्साहित हैं और इसे बॉलीवुड इतिहास में सबसे भावुक पुनर्मिलन में एक माना जा रहा है। कॉमेडी फिल्मों के प्रशंसकों के लिए एक दिलचस्प खबर, क्या जून के पहले सप्ताह में हेरा फेरी 3 की शूटिंग और स्क्रिप्ट को लेकर नई चर्चाएं सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स फिल्म की कॉमिक टाइमिंग और पुराने जादू को बरकरार रखना चाहते हैं। खास ध्यान रखे जा रहे हैं फिल्म की स्टार कास्ट को लेकर फैंस में लगातार उत्साह बना हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग एक बार फिर राजू श्याम और बाबूराम की तिरकी को बड़े पर्दे पर देखने की इच्छा जता रहे हैं। और अब बात बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री कियारा आडवाणी की। कियारा आडवाणी की अगर हम बात करें तो क्या याद आता है? जी हाँ, कियारा आडवाणी जून के पहले

सप्ताह में खबरें आई हैं कि कियारा ने अपनी आने वाली फिल्म के लिए नया लुक टेस्ट पूरा कर लिया है। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अनुसार इस फिल्म में उनका किरदार पहले निभाए गए रोल से बिल्कुल अलग होने वाला है। सोशल मीडिया पर फैंस लगातार अनुमान लगा रहे हैं कि अभिनेत्री इस बार किस नए अवतार में नजर आने वाली हैं। माना जा रहा है कि आधिकारिक घोषणा जल्द ही की जाएगी। रामायण की बात करें, रामायण की भव्यता को लेकर बड़ी उत्सुकता है लोगों में। बॉलीवुड की सबसे चर्चित मेगा फिल्मों में शामिल है रामायण। जून में के पहले सप्ताह में फिर सुर्खियों में आ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म की विजुअल इफेक्ट्स, विशाल जो सेट्स और अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी टीम को लेकर नई जानकारियां सामने आई है। दर्शकों में ये जानने की उत्सुकता बढ़ गई है और भारतीय पौराणिक कथा को बड़े पर्दे कर किस भव्य रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, इसकी उत्सुकता लोगों में है। फिल्म प्रेमी सोशल मीडिया पर इसे बॉलीवुड की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में एक बता रहे हैं। 3:12, चलिए आगे बढ़ते हैं एक गीत के साथ। हेरा फेरी है फिल्म का नाम। उदित नारायण और अलका याग्निक है की आवाजें और ललित सेन ने इसे संगीतबद्ध किया। कार्यक्रम है 3 का तड़का। आप जुड़े हुए हैं संचिता के साथ।

0: 107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति
1: सरकारी उद्यम और तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। आज परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना PMAGY, एक केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति SC की अधिक आबादी वाले गांवों का एकीकृत मॉडल करना है। इस योजना के तहत गांवों को आदर्श ग्राम यानी कि मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाता है। योजना की अगर लक्ष्य की बात करूं तो ऐसे गांवों का समग्र विकास करना जहां की कुल जनसंख्या 500 या इससे अधिक हो या फिर वहां अनुसूचित जाति की आबादी 40% या 50% से अधिक हो। कार्यान्वयन ये सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। विकास का तरीका कुछ इस तरह से है कि केंद्र और राज्य सरकार की मौजूदा ग्रामीण विकास योजनाओं को आपस में जोड़कर समन्वय बनाकर गांवों का विकास किया जाता है। गांव में बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पक्की सड़कें, पानी, बिजली की व्यवस्था की जा रही है और स्वास्थ्य और पोषण का भी ध्यान रखा जा रहा है। सेवाओं को बेहतर बनाने का उद्देश्य बना लिया गया है और शिक्षा के स्तर पर भी ऊपर उठना, ताकि शिक्षा का स्तर जो है ऊपर उठे और कौशल विकास को बढ़ावा मिले। गांव के लोगों के लिए आजीविका यानी कि रोजगार के अवसर भी उत्पन्न किए हैं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना ने। 2010 में शुरू की गई PMAGY योजना का उद्देश्य गांवों को सशक्त बनाना, विशेष रूप से उन गांवों को जहां अनुसूचित जाति की आबादी अधिक है, ताकि उनका समग्र विकास हो सके। ये योजना सुनिश्चित करती है कि गांवों को स्वच्छ पेयजल, विद्युतीकरण, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो। सामाजिक समावेशिता पर विशेष बल दिया जा रहा है। समुदाय वाले गांवों के विकास को प्राथमिकता देकर ये योजना असमानताओं को कम करने और समानता को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। ये सामुदायिक भागीदारी को भी प्रोत्साहित कर रही है जिससे ग्रामीण अपनी प्रगति में सक्रिय भागीदार बन सके। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कई उद्देश्य द्वारा निर्देशित है। अवसर संरचना विकास की अगर बात करें, अवसंरचना विकास यानी कि जैसा कि कहा कि आवास, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र या फिर सड़कों की बात आ जाती है। स्वच्छता में अवशिष्ट प्रबंधन यानी कि प्रणालियों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। विद्युतीकरण, गांवों में सशक्त प्रतिशत विद्युतीकरण सुनिश्चित किया जा रहा है और स्वच्छ पेयजल की जो उपलब्धता उसे सुनिश्चित की जा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना, चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित

चित किया जा रहा है। साक्षरता दर में सुधार करना, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना या फिर कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार सृजन करना। हाशिए पर पड़े समुदाय विशेषकर अनुसूचित जातियों को सशक्त बनाना, पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं और हरित पहलों को भी बढ़ावा देना।

0: परियोजना का मुख्य उद्देश्यों में एक है। पात्रता की बात करें, ग्राम की आवश्यकताएं, यानी जिन गांवों में अनुसूचित जाति की आबादी बहुसंख्यक है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। या फिर अगर राज्य की भागीदारी की बात करें तो राज्यों को इस योजना में शामिल करने के लिए पात्र गांवों को नामित करना जरूरी है। लाभार्थियों को चयनित गांवों के निवासी, जिसमें हाशिए पर रहने वाले समुदाय या फिर विशेष ध्यान दिया जाना भी जरूरी है, और लाभार्थी को सरकार द्वारा निर्धारित आय मानदंडों को पूरा करना भी जरूरी है। अगर आवेदन करना है तो किस तरह से करेंगे? PMAGY के लिए आवेदन करना एक सरल प्रक्रिया है। यहाँ आप चरण दर चरण, अगर मैं बताती हूँ आपको, ग्राम नामांकन राज्य सरकारें मानदंडों के आधार पर पात्र गांवों को नामांकित पहले करें, फिर दस्तावेजीकरण कर सकते हैं, जनसंख्यीय विवरण या फिर ग्राम विकास योजनाओं सहित जो आवश्यक दस्तावेज है उसे आप जमा कर दें। अधिकारी प्रस्तावित परियोजनाओं की पात्रता और व्यवहार्यता का सत्यापन करें, और सत्यापन हो जाने के बाद गांवों को PMAGY के अंतर्गत शामिल करने के लिए अनुमोदित कर दिया जाता है। कार्यान्वयन धनराशि जो है आवंटित की जाती है और विकास परियोजनाएं शुरू हो जाती है। इसके कई लाभ हैं, जैसे स्वच्छता में सुधार आ चुका है, बेहतर संपर्क यानी कि ग्रामीण जो सड़कें हैं वो आवागमन के लिए बाजारों तक पहुंच रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं भी पहुंच चुकी है, स्वास्थ्य सेवाएं ग्राम तक, रोजगार सृजन हुआ है, ग्रामीणों का जो रोजगार है सृजित किए गए हैं, और शैक्षिक विकास स्कूलों और छात्रवृत्तियों में तो हुआ ही है। आज हम बात कर रहे थे परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के बारे में।
1: 107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

107 एफएम रेनबो पर आप सुन रहे थे कार्यक्रम तीन का तड़का। थोड़ी देर में हम सुनेंगे कार्यक्रम एनसीईआरटी से आधारित कार्यक्रम 3:30 पर। इस कार्यक्रम में आपके साथ थी मैं संचिता। फिर मिलेंगे 5:20 पर एफएम गोल्ड पर लेकर कार्यक्रम चाय और क्लासिक्स।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से लवी कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं
0: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
2: जी।
0: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
2: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शाहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी।
2: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
0: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है
2: सप्रेम नमस्ते जी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना पक्षियों को दाना खिलाना डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
0: आगे आप लिखते हैं सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है
2: जी।
0: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है
2: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अलवर टिक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
0: तो विमलेश जी अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे
0: जी।
2: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह, इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है और जापानी भाषा में इसे चानु यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है
0: जी। हाँ श्रोताओ, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान शांति अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
2: जी अजीत जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
0: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं।
2: जी अजीत जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
0: जैसे?
2: जैसे कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है। इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं।
0: जी सचमुच चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
2: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
0: तो क्या क्या नियम है इसके?
2: जापान का चाय समारोह चार मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वाह।
0: वाह यानी?
2: यानी हारमोनी या सामंजस्य।
0: और दूसरा शब्द क्या है?
2: दूसरा शब्द है केई।
0: जी
2: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
0: और श्रोताओं, तीसरा शब्द है सेई यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और चौथा शब्द है याकू यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
2: श्रोताओं, इन चार सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो जी जी, अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
0: जी हाँ, तो श्रोताओं, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं, ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है।
2: जी, एक और खास बात ये है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा।
0: जी, और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
2: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है, बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चाशित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
0: यानी कुल मिलाकर ये चाय समारोह सादगी विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है।
2: जी
0: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
2: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। श्रोताओं, इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
0: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
2: जी, तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
0: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
2: जी, तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी जानकारी ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
2: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
0: और हाँ,
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
2: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
3: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहां का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से, बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
4: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। हाँ। पाए लागू बड़ी बहुरिया।
5: आ गए भैया।
4: हाँ।
5: लो ये पीढ़ी सरका लो, कुछ देर बैठ जाओ।
4: हाँ। बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर फटक रही है। ओह, कहां गए वो दिन? बड़े भैया क्या गए, जैसे सब खेल खत्म।

0: तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी? अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
1: आए देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ।
2: अरे मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
1: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
2: लो।
1: देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते। और हाय
3: हर गोविंद भाई, तुमको एक संवाद ले जाना है, आज ही। बोलो, चाहोगे ना?
2: कहाँ बड़ी बहुरिया?
3: मेरी माँ के पास।
2: माँ के पास? कहिए क्या संवाद है?
3: माँ से कहना मैं भाई भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए? किसके लिए?
2: बड़ी बहुरिया।

0: हर गोबिंद भैया, ये 5 का नोट ही बचा है अब, पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी, आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना ना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूं।

0: दूंगा।
1: तुम कहां से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
0: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिक्र मत करिए। ये नोट रखिए,
1: अरे
0: हारे गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
1: अच्छा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
0: अच्छा, चलता हूँ।
2: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।
0: भाई साहब,
3: हाँ,
0: थाना बिहपुर में ये डाक गाड़ी रुकती है या नहीं?
3: अरे भैया, थाना बिहपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं।
0: अच्छा अच्छा,
3: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा।
0: अच्छा,
3: घबराओ मत, बता दूंगा।
0: तो कितना समय और लगेगा?
3: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है।
0: हाँ?

0: जयपुरी
1: थाना बेहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हर गोविंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा। बड़ी बहुरिया के संवाद रह रह कर उसके कानों में गूंज रहे थे।
2: हर गोविंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जियूं, कब तक जियूं?
3: बड़ी बहुरिया, हम क्या करें?
1: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
4: माँ, माँ देखो हरगोबिंद काका आए हैं।
5: पाए लागू माँ जी।
6: जीते रहो हरगोबिंद बेटा, क्या समाचार है?
5: जी आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
6: मेरी बेटी का कोई संवाद?
5: संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं। हाँ? बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
6: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
5: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
6: सो तो है।
5: अरे छुट्टी मिलेगी तो कैसे, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
6: अरे हर गोविंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर

0: अपनी दीदी को लिवाला, यहीं रहेगी। अरे वहां अब क्या रह गया है उसका, जमीन जायदाद तो सब चली गई। तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। टूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली, बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, और गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी।
0: हाँ सो तो है, चलो अच्छा है। बबुआ अब थोड़ा जलपान कर लो।
1: अच्छा अच्छा माँ जी।
0: अरे हर गोबिंद, क्या सोच रहे हो? कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
2: हर गोबिंद ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हर गोबिंद के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया, वो किस लिए आया था, वो झूठ क्यों बोला। ये सोच सोच कर रात भर हर गोबिंद को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसक रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माँ जी के पास जा पहुंचा।
1: माँ जी अब आज्ञा दीजिए।
0: अरे
1: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माँ जी अब पाए लागू।
0: जीते रहो बेटा,
1: अब चलता हूँ।
3: क्यों भाई, रहा खर्च तो है?
1: अरे भैया जी आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है।
3: अच्छा
1: अच्छा राम राम
3: राम राम
1: राम, राम।

0: हरगोबिंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा?
1: कटिहार आ गया। उतर लो, जाना है जलालगढ़। टिकट कटिहार तक का ही है। जलालगढ़ है 20 कोस दूर। अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस कोस की मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय।

0: भूख से बेहाल, थकान से चूर लड़खड़ाता हुआ हरगोबिंद बहुरिया के दरवाजे पर गिर पड़ा।
1: हरगोबिंद भाई आ गए? हाय, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ?
2: बड़ी बहुरिया।
1: हरगोबिंद भाई लो एक घूंट दूध ले लो, मुंह खोलो। हाँ लो, आप पी लो, पी लो। शाबाश शाबाश शाबाश, अब जी कैसा है?
2: बड़ी बहुरिया मुझे माफ कर दो।
1: कहे?
2: मुझे माफ कर दो,
1: पर
2: मैं तुम्हारा संवाद न कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ।
1: हरगोबिंद भाई,
2: मैं तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, कोई कष्ट नहीं। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया, तुम सारे गांव की माँ हो। तुम्हारा सब काम करूंगा मैं।
1: हरगोबिंद भाई, तुम
2: मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा। बोलो बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? नहीं जाओगी ना? नहीं जाओगी ना?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी।
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम संवदिया। आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिए।
4: Join together in the Janajatiya Garima Utsav, celebration of pride, aspiration and the journey towards Viksit Bharat. Inspired by the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, tribal communities move forward with hope, dignity and determination. Celebrating Janajatiya Garima Utsav 2026, 10th May to 9th June, showcasing progress across every generation towards a stronger, inclusive and empowered Viksit Bharat.
5: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम जो हमें लेकर जाएगा मरुभूमि यानी
3: मरुस्थल में या रेगिस्तान में
5: जी,
3: और बताएगा विस्तार से रेगिस्तान के बारे में। तो आइए जानते हैं रेगिस्तान या मरुभूमि के बारे में और सुनते हैं कार्यक्रम द डेजर्ट।
6: दोज ऑफ अस हु लिव इन रीजंस कवर्ड विद फॉरेस्ट्स एंड सराउंडेड बाय हिल्स may find it difficult to imagine what a desert is really like. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and, therefore, no vegetation grows. It is dry, hot, waterless and without shelter. But this is not entirely correct. For those who have studied it, the desert can be a beautiful place. It is the home of a variety of people, animals and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climates. But whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. It may have mountains and hills. It may have an oasis, big or small. An oasis is like a green island in the middle of a desert where a spring or a well gives plants and trees a better chance to grow. A desert may be hot like the Thar, or cold like Ladakh. But generally speaking, if a place has little or no water and vegetation, people usually call it a

0: টেলিলয়ের অ্যাপ, ওয়েবসাইট www.tele-law.in অথবা টোল ফ্রি নাম্বার 14454 এর মাধ্যমে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা লাভ করা সম্ভব।
1: নমস্কার, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ। पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: जाने अनजाने

सबकी खैरियत पूछते हुए 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम है जाने अनजाने। हर शनिवार इस कार्यक्रम से रूबरू होते हैं हम और आप। सुरों की डोरी में बंधे कुछ मीठे से अफसाने होते हैं, दिल की धड़कन संग चलते प्यार भरे ये तराने होते हैं। कभी बारिश की बूंदों जैसे मन को छू जाते हैं, कभी चांदनी रातों में कई सपने बन जाते हैं। जब तन्हाई गुनगुनाए यादों का कोई फसाना, तब रेडियो पे बज उठता है मोहब्बत का तराना। प्यार भरे नगमे, हर नगमे में बसती जैसे दिल की कोई कहानी। ये गीत नहीं बस एहसास है, धड़कनों की जुबानी है। कभी पहली मोहब्बत जैसी कभी यादें पुरानी। हर सुर में छिपी है खुशबू, हर लफ्ज में एक सपना। जो सुन ले दिल से इनको, लगे अपना हर अपना। तो आइए थामिए पलकों पर कुछ मीठे से अरमान, सुनते हैं मिलकर आप और हम प्यार भरे नगमे। 7:11। हाँ, नगमों को लेकर तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आज के जो ये नगमे हैं उनके पीछे कुछ कहानियां भी हैं। उन कहानियों को हम सुनेंगे, जानेंगे और साथ गुनगुनाएंगे भी। उदित नारायण, साधना सरगम की।

आवाज में जो जीता वही सिकंदर। मजरू सुल्तानपुरी के बोल को जतिन ललित ने संगीतबद्ध किया। प्यार भरे नगमे, फिल्म से ज्यादा लोकप्रिय कुछ गीत होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वो गीत आज भी हमें याद हैं। ऐसे ही कुछ प्यार भरे नगमों के साथ आज की कहानी, आज का ये दिन।

0: असली ओजी कौन है बॉस? रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: जाने अनजाने FM रेनबो पर कार्यक्रम है जाने अनजाने। चलिए आगे बढ़ते हैं जाने अनजाने में। जिस गीत को आप सुन रहे थे, जो जीता वही सिकंदर से, 90 के दशक के गलियारों से, 90 के गलियारों से अब बढ़ते हैं 80s की ओर। पहला नशा, ये गीत हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार यूथफुल रोमांटिक सॉन्ग्स में गिना जाता है। कम लोगों को पता है कि गाने के कई हिस्से जो है स्लो मोशन में फिल्माए गए थे, जिससे पहली मोहब्बत की जो ड्रीमी फीलिंग है ना, वो पैदा हो सके। संगीतकार जोड़ी जतिन ललित ने इसकी धुन को बेहद सॉफ्ट और वेस्टर्न रोमांटिक स्टाइल में तैयार किया। उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज ने युवाओं के दिलों में खास जगह बनाई। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी ने पहली मोहब्बत की बेचैनी और मासूमियत को शब्दों में प्रकाश किया। आगे बढ़ते हैं 80s की ओर बढ़ते हुए, ये 1985 की फिल्म है प्यार झुकता नहीं। 1980 के दशक का ये गीत भी युवाओं के बीच प्रेम का एक प्रतीक बन गया था। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि फिल्म के संगीत की सफलता ने फिल्म की लोकप्रियता को कई गुना बढ़ा दिया। ऐसा ही होता है, कभी कभी गीत इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि फिल्म से पहले आगे बढ़ जाते हैं। और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन को सरल लेकिन अत्यंत मेलोडियस मधुर रखा, ताकि ये तुरंत लोगों की जुबान पर चढ़ जाए, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों का मेल दर्शकों को खूब पसंद आया, और SH बिहारी ने पहली मोहब्बत की मासूमियत को शब्दों की खूबसूरती से जाहिर भी किया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी गीत के साथ, कार्यक्रम प्यार भरे नगमे। हर मंगलवार आप जुड़े रहते हैं इस कार्यक्रम के साथ। आपके साथ हूं मैं संचिता। 7:20

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: आकाशवाणी @90 90 साल की आवाज।

मुश्किल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

107 FM रेनबो पर कार्यक्रम प्यार भरे नगमे। हर ट्यूसडे आप जुड़ते हैं इस कार्यक्रम के साथ, आगे बढ़ेंगे एक और गीत के साथ। ये गीत भारतीय संगीत के सबसे भावनात्मक प्रेम गीतों में गिना जा सकता है। फिल्म में इसके दो अलग अलग संस्करण रखे गए थे, एक किशोर कुमार की आवाज में और दूसरा परवीन सुल्ताना द्वारा गाया हुआ। शास्त्रीय अंदाज वाला जो संस्करण है, संगीतकार राहुल देव बर्मन ने दोनों संस्करणों का जो मूड है वो अलग रखा, ताकि प्रेम और विरह की जो भावना है, भावनाएं अलग तरह से महसूस हो। गीतकार मजरूर सुल्तानपुरी ने अत्यंत सरल शब्दों में बहुत ही गहरी भावनाएं व्यक्त किए। शास्त्रीय संस्करण संगीत प्रेमियों के बीच जो है विशेष रूप से सराहा गया। हम आपको सुनाएंगे कुदरत फिल्म से इस गीत को किशोर कुमार की आवाज में। कार्यक्रम प्यार भरे नगमे, आपके साथ हूं मैं संचिता। सात बजकर 29 मिनट।

0: भरे नगमे। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: छायालोक में अब हम आगे बढ़ते हैं। 7:34 और 22 सेकंड आप जुड़े हुए हैं संचिता के साथ। छायालोक के अंतर्गत आज मंगलवार है तो सुन रहे हैं कुछ प्यार भरे नगमे। अगला जो गीत है रिलीज होते ही नई पीढ़ी के सबसे लोकप्रिय रोमांटिक गीतों में शामिल हो गया। गीत की लोकप्रियता का एक कारण इसकी जो सरल धुन और पंजाबी लोकस्पर्श के वजह से। संगीतकार जोड़ी तनिष्क बागची, आशीष कौर और जुबिन नौटियाल की प्रस्तुति इसे बेहद भावुक बना दिया। और तनिष्क बागची का ये जो मैजिक है प्रेम में इंतजार और अपनापन को सरल शब्दों में व्यक्त करता है। फिल्म की वास्तविक प्रेम कथा से जुड़े भाव ने भी दर्शकों को गहराई से इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया। जी हाँ, फिल्म का नाम शेरशाह।

0: भरे नगमे। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: FM रेनबो पर कार्यक्रम छायालोक के अंतर्गत प्यार भरे नगमे। प्यार से नगमों को आगे बढ़ाते हैं और ये गीत हाल के वर्षों के सबसे मेलोडियस गीत तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ 2022 की एक फिल्म

आई थी भेड़िया। इस फिल्म के ट्रैक्स बहुत चले थे और मेलोडियस रोमांटिक ट्रैक्स में इसे गिना जाता है। संगीतकार सचिन जिगर ने इसके धुन को मॉडर्न ऑर्केस्ट्राइजेशन और सॉफ्ट मेलोडी के संतुलन के साथ तैयार किया। अरिजीत सिंह की भावनात्मक गायकी ने गीत को बेहद लोकप्रिय बना दिया और गीत के कई हिस्सों को मिनिमलिस्टिक एक अरेंजमेंट के साथ रिकॉर्ड किया गया था ताकि शब्द और भावना अधिक उभर कर सामने आए। गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य ने प्रेम में अपनापन और भावनात्मक सुरक्षा की भावना को बहुत ही खूबसूरत बनाया, बहुत ही खूबसूरती से पेश किया। कार्यक्रम प्यार भरे नगमे 107 FM रेनबो पर आपके साथ हूं मैं संचिता। 7:43 मिनट 33 सेकंड।

बिल्कुल, और 7:46 44 सेकंड 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम प्यार भरे नगमे। अगला गीत अपनी भव्य लोकेशंस और मधुर धुन के कारण 2000 के दशक के सबसे आइकॉनिक रोमांटिक सॉन्ग्स में गिना जाता है। निर्देशक करण जौहर ने इस गाने को इजिप्ट मिश्र के पिरामिडों के पास फिल्माने का निर्णय लिया, जो उस समय बॉलीवुड के लिए बेहद एक दुर्लभ लोकेशन तो था ही। संगीतकार जोड़ी संदेश शांडिल्य ने इसकी धुन को सूफियाना स्पर्श भी दिया। ऑर्केस्ट्रल अरेंजमेंट के साथ तैयार किया गया सोनू

निगम और अलका याग्निक की आवाज ने इसे एक कालजयी गीत बना दिया, प्यार भरे गीत। जी हाँ, प्यार भरे नगमे के अंतर्गत इस रोमांटिक गीत को शामिल करते हैं। अनिल पांडे ने प्रेम को प्रकृति के रूप से, माध्यम से, खूबसूरती से व्यक्त किया। जब सूरज मध्यम हो जाता है और अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज गूंजती है, तो बन जाता है कभी खुशी कभी गम का माहौल। सात बजकर 48 मिनट 107 FM रेनबो पर प्यार भरे नगमे, आपके साथ मैं संचिता।

0: प्यार भरे नगमे।
1: वन ओ सेवन एफ एम रेनबो पर प्यार भरे नगमे और आखिरी पांच मिनट 8 बजे हम चलेंगे खबरों की दुनिया से रूबरू होने और फिर वापस आएंगे 8:02 पर। लेकिन जाते जाते एक और गीत अपने कह सकते हैं एक फ्रेश साउंड और सोलफुल मेलोडी के लिए आज भी हम बेहद पसंद करते हैं इस गीत को और संगीतकार ए आर रहमान ने इस धुन को मूल तमिल जो फिल्म है अलाई पायुथे के साउंड ट्रैक से अडेप्ट तो किया था लेकिन हिंदी संस्करण में इसे नए अरेंजमेंट के साथ पेश किया गया। सोनू निगम की आवाज ने गीत को गहरी रोमांटिक एक भावना दी। गुलजार साहब ने बेहद काव्यात्मक लेकिन सरल शब्दों का प्रयोग किया अपने गीत को लिखने में और फिल्म की जो शहरी प्रेम कथा के मूड को स्थापित करने में बिल्कुल कामयाब रहा। फिल्म साथियां का टाइटल ट्रैक चलिए सुनते हैं और 8:02 पर फिर वापस आते हैं इसी कार्यक्रम के साथ प्यार भरे नगमे।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: प्यार भरे नगमे, रेनबो पर कार्यक्रम प्यार भरे नगमे। इस कार्यक्रम को आप प्रसार भारती के न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन पा रहे हैं। 8:05 आप जुड़े हुए इस कार्यक्रम में संचिता के साथ। आगे बढ़ेंगे एक और प्यार भरे नगमे के साथ। 2004 को रिलीज हुई थी ये फिल्म। इस गीत से जुड़ा सबसे रोचक तथ्य ये है कि फिल्म का संगीत दिवंगत संगीतकार मदन मोहन की अनरिलीज्ड कॉम्पोजिशंस पर आधारित था, जिन्हें उनके पुत्र संजीव कोहली ने संरक्षित रखा था। निर्देशक यश चोपड़ा ने इन धुनों को सुनने के बाद उन्हें फिल्म में शामिल करने का फैसला लिया। उदित नारायण की भावुक आवाज ने गीत में विचरण और इंतजार की भावना को प्रभावशाली बना दिया और गीतकार जावेद अख्तर ने दूरी में भी प्रेम की स्थिरता को बनाए रखा अपने शब्दों के जाल से। कार्यक्रम प्यार भरे नगमे।

8:11:40 107 FM रेनबो पर प्यार भरे नगमे। एक गीत सरल प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, कम लोगों को ये जो गीत है वो ज्यादातर समर्पण ही लगा, लेकिन प्यार का एक मतलब समर्पण भी होता है। निर्देशक आदित्य चोपड़ा चाहते थे कि गाने में वही भव्यता लगे और सादगी से जो है उसी कहानी को बयां करे, ताकि साधारण इंसान के प्रेम को दर्शाया जा सके, जिसमें प्रेम तो है साथ में समर्पण भी है। संगीतकार जोड़ी सलीम सुलेमान ने धुन को जानबूझकर बहुत ही एक सॉफ्ट

और डिवोशनल टच दिया। रूप कुमार राठौर की गहरी आवाज ने गीत को अलग ऊंचाई दी। गीतकार जयदीप साहनी ने प्रेम को ईश्वर जैसी अनुभूति के रूप में बेहद सरल शब्दों में व्यक्त किया। कार्यक्रम है प्यार भरे नगमे। शामिल करती हूँ इस गीत को इस कार्यक्रम में, रब ने बना

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: प्यार भरे नगमे,

107 एफएम रेनबो पर प्यार भरे नगमे। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और एक बहुत ही दिलचस्प नगमे, एक नगमा है फरेब फिल्म से। सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी यूं तो फरेब, लेकिन इसकी कहानी से कहीं अधिक इसके गाने लोकप्रिय हुए, खासकर ये तेरी आंखें झुकी झुकी या फिर वो गीत प्यार का पहला पहला। जी हाँ, 90 के दशक में रोमांटिक गीतों की सूची में खास जगह बना ली थी। आज भी कई लोग फिल्म की तुलना में इसके गाने ज्यादा याद करते हैं। जतिन ललित और इंदिवर की एक खूबसूरत जोड़ी तो मान ही जाती है। गीत का संगीत प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी ने दिया, और जबकि इसके बोल जो दिग्गज गीतकार थे इंदिवर साहब की सरल लेकिन गहरी रोमांटिक लेखनी ने इस गीत को एक अलग पहचान दी। अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज ने जादू बिखेर दिया। 90s के दशक में अभिजीत की रोमांटिक आवाज की खास पहचान थी कि उस गीत को भी उनकी गायकी ने बेहद मधुर और यादगार बना दिया। फराज खान की पहचान बन गई थी ये फिल्म 90s की दशक की शादियों में ऑर्केस्ट्रा का पसंदीदा गीत। चलिए इस फिल्म से दो गीत सुनेंगे प्यार भरे नगमे के अंतर्गत। सबसे पहला गीत है कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में, और दूसरा अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में। कार्यक्रम प्यार भरे नगमे, 8:20 15 सेकेंड, 107 एफएम रेनबो पर कार्यक्रम प्यार भरे नगमे में आपके साथ हूं मैं संचिता।

अगला जो गीत है, इस फिल्म को हमने 2007 में देखा रिलीज होते हुए, सबसे मधुर एवरग्रीन रोमांटिक ट्रैक्स में इसे भी गिना जाता है, और प्रीतम ने इसके धुन को बेहद मिनिमल तो रखा ही, इस गीत के साथ कई सारी भावनाएं भी जोड़ दी। मोहित चौहान के करियर के लिए ये गीत एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एक सॉफ्ट अर्दी वॉइस जो युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ। इम्तियाज अली ने फिल्म के इमोशनल ट्रांजिशन को, जो इमोशनल बदलाव है, उसको दर्शाने के लिए इस गीत को एक अहम जगह पर यूज किया गया, और इरशाद कामिल ने रोजमर्रा की भावनाओं में प्रेम को पिरोया और फिर ये गीत बनी, जब वी मेट। कार्यक्रम है प्यार भरे नगमे। 8:29 आप जुड़े हुए इस कार्यक्रम में संचिता के साथ।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक। प्यार भरे नगमे, प्यार भरे नगमे 107 FM रेनबो पर। इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए आप 8:35 और 46 सेकंड। 2012 में एक फिल्म आई थी राब्ता, शब्द का अर्थ गहरा भावनात्मक या फिर आत्मिक जुड़ाव। यही भावना इस गीत का केंद्र है। संगीतकार प्रीतम ने इसकी धुन में सूफियाना एहसास और कंटेम्प्रेरी साउंडस्केप का एक मिश्रण किया। गीत अरिजीत सिंह के शुरुआती चर्चित रोमांटिक ट्रैक्स में शामिल एक गाना माना जाता है, जिसमें उनकी पहचान को मजबूत किया। गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य ने रिश्तों और किस्मत के जुड़ाव को खूबसूरती से शब्द में पिरोया। फिल्म अपेक्षाकृत कम सफल रही और ये सैफ अली खान की खुद की प्रोडक्शन कंपनी की फिल्म थी, लेकिन गीत ने अलग और स्थाई एक लोकप्रियता, एक पॉपुलैरिटी हासिल कर ही लिया। चलिए इसी फिल्म का एक गीत सुनते हैं, कार्यक्रम प्यार भरे नगमे।

कोई ना कोई राबता तो है इन गीतों के साथ जो इतने सालों के बाद भी आज हम गुनगुनाते हैं और इनसे बड़े चाह से सुनते हैं। फिल्म ऑल इज वेल का लोकप्रिय गीत बातों को तेरी एक दिलचस्प वजह से खास माना जाता है। इस गीत को गायक अरिजीत सिंह ने अपनी भावुक आवाज दी, जबकि इसका संगीत हिमेश रेशमिया ने तैयार किया था। बोल शब्बीर अहमद के थे और ये है कि इस गाने के इमोशनल ट्रैक के रूप में इसे तैयार किया गया था और रिलीज होते ही इसकी जो एक सोलफुल मेलोडी थी श्रोताओं को इतनी आकर्षित करता है ये गीत अपनी ओर कि म्यूजिक वीडियो में अभिषेक बच्चन और आसिन थोटूतमल की जो भावनात्मक केमिस्ट्री है उसको देखने से पहले ही ये गीत जो है लोकप्रिय हो गई। तो ऐसे गीत जब कोई फिल्म नहीं चलती लेकिन गीत बहुत पॉपुलर हो जाते हैं तो वो सालों बाद भी लोगों को याद रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ इस गीत के साथ भी। फिल्म ऑल इज वेल, फिर से अरिजीत सिंह की जादुई आवाज, शब्बीर अहमद के बोल को हिमेश रेशमिया ने संगीतबद्ध किया। 8:42

0: होके जुदा भी हम जुदा ना हो सके, क्योंकि ये आवाज़ ही कुछ ऐसी है जो हर सिचुएशन के हिसाब से अपने को तब्दील कर लेती है। इसका नाम है अरिजीत सिंह।
1: प्यार भरे नगमे।
0: रेनबो पर कार्यक्रम है प्यार भरे नगमे, 8:46 और 58 सेकंड। अगला गीत जो है आधुनिक रिश्तों की भावनात्मक जटिलता कॉम्प्लेक्सिटीज को बेहद संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत करता है गीत में, और संगीतकार एआर रहमान ने फिर से अपना मैजिक दिखाया। इसके धुन को जानबूझकर बहुत ही काबू में रखा, रेस्ट्रेन रखा, ताकि भावनात्मक जो दर्द है, प्यार का जो दर्द है, वो स्वाभाविक लगे। अलका याग्निक की वापसी और अरिजीत सिंह की संयमित गायकी जो है खूब सराहा गया। इस फिल्म के जो गीत हैं, लगभग सारे गीत हिट रहे, और निर्देशक इम्तियाज अली ने इसे फिल्म के इमोशनल क्लाइमेक्स के रूप में इस्तेमाल किया था। आप समझ गए होंगे, इरशाद कामिल ने प्रेम, डर और खोने की पीड़ा को बेहद सादगी से व्यक्त किया फिल्म आशिकी 2। जी हाँ, आशिकी 2। और एक और गीत जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगी, अलका

याग्निक और अरिजीत सिंह जिसका जिक्र मैं अभी तक कर रही थी, इरशाद कामिल के बोल को एआर रहमान ने संगीतबद्ध किया। इस फिल्म का नाम है तमाशा। सुनेंगे दोनों गीतों को। सबसे पहले तमाशा से इस ट्रैक को सुनते हैं। कार्यक्रम प्यार भरे नगमे, आपके साथ हूं मैं संचिता। 8:48

2010 के दशक का डिफाइनिंग रोमांटिक एंथम माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि संगीतकार मिथुन ने इसकी कॉम्पोजिशन कई वर्ष पहले तैयार की थी, लेकिन सही फिल्म और भावनात्मक संदर्भ मिलने का इंतजार था और वो मिल गया आशिकी 2 के जरिए 2013 में। अरिजीत की सोलफुल आवाज ने इस गीत को असाधारण ऊंचाई दी और उनके करियर का बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। गीतकार मिथुन ने प्रेम में पूर्ण समर्पण की भावना को शब्द भी दिए।

चलिए आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ, जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, फिल्म तमाशा अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की युगलबंदी। इरशाद कामिल के बोल को एआर रहमान ने संगीतबद्ध किया। ...2015 में इस फिल्म ने धमाल मचाया था।

सुरों की उन डोरी में बंधे कुछ मीठे से अफसाने, दिल की धड़कन संग चलते चलते प्यार भरे ये तराने आपके लिए पेश किए। आज मैं आपके साथ थी संचिता, इसी तरह आती रहूंगी, मिलती रहूंगी। तब तक के लिए सुनते रहिए आखिरी तराना, वे भी कस्तूरी अरिजीत सिंह की ही आवाज में। अगले कार्यक्रम के साथ रहिए और इजाजत दीजिए संचिता को इस कार्यक्रम से।